0: Two, one. Thank you.
1: मैडम जी आपनु बहुत ही प्यारा एक लोकगीत सुनाउणगे माइक रेडी कर दे हैं बॉबी साहब ने माइक रेडी कर दिया ये साडे ब्रॉडकास्टर हैं बॉबी पक्षाणा फ्रॉम यूपी इत ब्रॉडकास्टिंग दी सेवा निभाउंदे हैं बड़ा प्यारा बच्चा है बड़ा रिस्पेक्ट करता है कहिंदा अंकल जी आओ सानू गीत सुनाया करो तो हुण मैडम जी तुहानू एक बड़ा प्यारा है लोग गीत सुनाउणगे
2: हेलो उस तो पहला मैं एक शेर बोलना चाहांगी मेरी दर्द कहानी रातां दी इनू कोई सवेरा की जाने मेरी दर्द कहानी रातां दी इनू कोई सवेरा की जाने तेनू जिगर दिखा के की लैणा तेथों जख्म पछाणे नहीं जाने तेनू जिगर दिखा के की लैणा तेथों जख्म पछाणे नहीं जाने